याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय एक्का। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। उपदेशक ग्रंथ का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य के सुख दुख और संपन्नता विपन्नता की प्राप्ति का आधार निश्चित नहीं किया जा सकता। पक्ष विपक्ष के तर्कों की जांच के बाद लेखक इसी उत्तर पर पहुंचता है कि ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और शांति का स्रोत हैं।

प्रज्ञा बुद्धिमान मनुष्य को नगर के 10 शासकों से अधिक शक्तिशाली बनाती है। संसार में ऐसा कोई धार्मिक नहीं जो भलाई ही करता और कभी पाप नहीं करता। लोग जो बातें कहते हैं उन सब पर ध्यान मत दो, नहीं तो तुम अपने नौकर को अपने को कोसते सुनोगे, क्योंकि तुम यह नहीं जानते हो कि तुमने कितनी बार दूसरों को कोसा है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 19 से लेकर 22 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में प्रज्ञा, विवेक और ज्ञान को गुणी व्यक्तियों की पहचान निरूपित किया गया है। इन गुणों के द्वारा ही मनुष्य यथार्थ शक्ति प्राप्त करता है। श्रोताओं, उपदेशक ग्रंथ का 7वां अध्याय दुनियावी सुख सुविधाओं के भ्रम और जिंदगी की यथार्थ वास्तविकताओं के बीच अंतर बताने वाली ज्ञान की बातों का संकलन है। यह सिखाता है कि अच्छी शोहरत, प्रतिष्ठा अथवा ख्याति धैर्य या सब्र से आती है, और फिर मृत्यु की वास्तविकता को पहचानना तथा उसे स्वीकार करना एक अर्थपूर्ण जिंदगी की कुंजी है। श्रोताओं, इस स्थल पर उपदेशक बड़ी समझदारी से इस बात को प्रस्तुत कर देता है कि हम हमारे लिए दूसरों की बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, किंतु अन्यों के बारे में कुछ भी बक देते हैं। प्रायः बिना सोचे समझे अनर्गल बात कह देते हैं, जो कि अनुचित है, इसलिए कि जब दूसरे, यहाँ तक कि हमारे अधीन काम करने वाले, ऐसी बातें हमारे बारे में कहने लगते हैं तब हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। अस्तु, किसी के भी बारे में अनर्गल न बका जाए। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में बुरा भला न सोचें या कहें, तो हम भी अन्यों के बारे में बुरा न सोचें या बुरा न बोलें। किसी को मत कोसो ताकि और कोई भी तुम्हें न कोसे। 7वें अध्याय के 23वें और 24वें पदों में उपदेशक कहता है, प्रज्ञा दुर्लभ है। प्रज्ञावान बनने की हमारी इच्छा केवल बुद्धि से पूरी नहीं होती, इसलिए यह स्वीकार करना कि जो कुछ इस धरती पर अस्तित्व में है वह हमारी समझ से परे है, विनम्रता का काम है। अस्तु, मनुष्य यह स्वीकार करे कि जिस ईश्वर ने उसे रचा वही सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है, उसकी महिमा अपरम पार है।

आगे उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 25वें पद में उपदेशक कहता है, मैंने सारे हृदय से यह जानने का प्रयत्न किया कि प्रज्ञा और बुद्धि क्या है, और यह समझा कि दुष्टता ना समझी और मूर्खता पागलपन है। श्रोताओ, दुष्टता किसी व्यक्ति की वह बुरी मानसिकता यह स्वभाव है जो उसे जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने, दूसरों को कष्ट देने या अनैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह स्वार्थ, क्रूरता और विद्वेष पर आधारित होती है। दूसरों को दुख पहुंचाना, छल कपट और षड्यंत्र में रमना तथा अहंकार और स्वार्थ में लिप्त रहना दुष्टता के प्रमुख लक्षण हैं। दूसरी ओर मूर्खता, अंग्रेजी में जिसे हम स्टुपिडिटी कहते हैं, मूल रूप से विवेक, तर्क और सही समझ के अभाव की स्थिति है, जहां व्यक्ति बिना परिणाम सोचे समझे कार्य करता है। यह अज्ञानता या किसी चीज का ज्ञान न होने से अलग है। मूर्खता प्रायः सही जानकारी होने के बावजूद गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। उपदेशक कहता है कि दुष्टता और मूर्खता दोनों से बचना चाहिए, क्योंकि दुष्टता ना समझी और मूर्खता पागलपन है। श्रोताओ, 7वें अध्याय में उपदेशक जीवन के आंतरिक अर्थ को समझाने के लिए एक गहन और दार्शनिक खोज में लगा प्रतीत होता है। दुष्ट और मूर्ख व्यक्ति अच्छाई को देखने के बजाय जानबूझकर अज्ञानता और पाप की प्रकृति की खोज करते हैं। इसलिए उपदेशक इस नतीजे पर पहुंचता है कि बुराई और मूर्खता असल में बेमतलब और नुकसान पहुंचाने वाली हैं। वह इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि हालांकि प्रभु ईश्वर ने सत्य और सुंदर तरीके से सृष्टि की रचना की है, इंसानी मूर्खता और दुष्टता उसे खराब कर खुद अपनी जिंदगी को मुश्किल बना देती है। आगे 7वें अध्याय के अंतिम यानी कि 26 से लेकर 29 तक के पदों में उपदेशक कहता है, मैं यह समझता हूं कि कुछ स्त्रियां मृत्यु से भी कड़वी हैं, वे फंदे जैसी हैं, उनका हृदय जाल जैसा और उनके हाथ जंजीर जैसे हैं। जो ईश्वर को प्रिय है वही उनसे बच सकता है, किंतु पापी उनके जाल में फंसता है। उपदेशक कहता है कि अनुसंधान करते करते मैं इतना ही जान पाया, मैं अनुसंधान करता रहा किंतु मैं असफल रहा, मुझे 1000 में एक पुरुष मिला किंतु उन सबों में मुझे एक भी स्त्री नहीं मिली। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल बना दिया। श्रोताओ, ज्ञान की खोज में संलग्न उपदेशक सुलेमान समझ गया था कि कुछ स्त्रियां मृत्यु से भी अधिक कड़वी होती हैं। वे अपने करतूतों से या अपनी कड़वी भाषा से ऐसी हो सकती हैं। इसलिए कुछ स्त्रियां वह जाल है जिसमें पुरुष आसानी से फंस जाया करते हैं, किंतु जो व्यक्ति ईश्वर पर ध्यान लगाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वे उससे बच जाएंगे। जबकि जो पाप कर्मों में लगे रहते हैं वे स्त्रियों द्वारा बिछाए जाल में फंस जाते हैं। विधि विवरण ग्रंथ के 23वें अध्याय के 18वें पद के अनुसार ईश्वर का नियम है, कोई पुरुष या स्त्री मंदिर में होने वाले व्यभिचार के लिए अपने को अर्पित नहीं करेगी। श्रोताओ, सुलेमान ने उक्त पदों की रचना उस समय की होगी जब वह बूढ़ा हो चला था और उसकी पत्नियां उसे अन्य देवताओं की ओर रिझाने लगी थीं। वस्तुतः श्रोताओ, उपदेशक ग्रंथ सुलेमान के पश्चाताप की कथा है। उसने इसकी रचना तब की थी जब उसे दुनियावी भोग विलास और वासना की कटु सच्चाई की जानकारी हो गई थी। जब उसने अपनी गलतियों को समझा तभी वह ईश्वर की ओर अभिमुख हुआ। उपदेशक कहता है कि उसे 1000 में एक पुरुष मिला किंतु उन 1000 में उसे एक भी स्त्री नहीं मिली। बाइबल आचार्य राइट कहते हैं कि हैरम में या कई पत्नियों के साथ रहने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं हो सकता। वह सुखी तब होगा जब वह अपनी एकमात्र और अच्छी पत्नी के साथ जीवन बिताएगा। फिर अपने निष्कर्ष में उपदेशक सुलेमान
इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि ईश्वर ने मानव को पाप रहित बनाया था, किंतु आदि मानव आदम के समय से ही वह ईश्वर के खिलाफ पाप और बगावत की कई साजिशें रचता चला आ रहा है। इसीलिए अंतिम पद में कहता है, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया, किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल बना दिया।

आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन की 22वीं सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सुसमाचार से हमारे लिए विश्वास का जन्म होता है, जहां हम ख्रीस्त से भेंट करते हैं जो मृतकों में से जी उठकर आज भी कलिसय में उपस्थित हैं। सुसमाचार को केंद्र बिंदु में लाना हम धर्माध्यक्षकों के लिए उत्साह का कारण बनता है। संत पापा ने चरवाहों के लिए चिंतन प्रस्तुत करते हुए कहा, हम खुद से यह पूछें, हम सुसमाचार प्रचार, धर्म शिक्षा, पूजन विधि, करुणा के कार्यों और अपने सामुदायिक जीवन में ईश्वर के किस चेहरे को चमकने देते हैं। संत पापा ने कहा, अतः ख्रिस्तीय जीवन की पहल करना सिर्फ संस्कारों के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि यह एक कोक की भांति है जहां समुदाय में विश्वास उत्पन्न होता है, जो विश्वासियों को ईश्वर से मिलन, उनके पास का अनंत जीवन की ओर अग्रसर करता है। संत पापा लियो ने इस भांति इतालवी धर्माध्यक्षों के धर्म सम्मेलन को इस बात की चुनौती दी कि वे अपने समुदाय को सजीव और स्वागत करने, यूखरिस्त को जीवन का केंद्र बनाने, जहां गरीबों की सेवा बाह्य रूप में केवल नहीं की जाती, बल्कि वे हमारी भाई बहन बनते हैं जिनके द्वारा हम ईश्वर से बातें करते हैं, जहां हम युवाओं की आवाज को सुनते और उनके जीवन की कहानियों से अपने को वाकिफ करते हैं। कलिसय में चरवाहों की बुलाहट के सार की याद दिलाते हुए संत पापा ने धर्माध्यक्षकों को गहराई से सुनने हेतु आह्वान किया। जहां सच्चा सुना जाता, वहां समुदाय अपने में सिमट कर नहीं रहता, बल्कि यह समझदारी और प्रेरिताई की जगह बन जाती है और इसके द्वारा हम स्वयं को नवीन बनाते हैं, संत पापा ने कहा। सिनोडालिटी की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए संत पापा ने धर्माध्यक्षकों से कहा कि ईश्वर हमें एक प्रजा के रूप में पवित्र करते हैं, अतः सिनोडल कलिसिया हर एक को पवित्र आत्मा में मिले वरदानों को साझा करने का निमंत्रण देता है, जहां हमारी सहभागिता, एकता और प्रेरिताई एक आवश्यक शैली, उत्तरदायित्व और योजना बनती है, जिनके माध्यम हम विभिन्न कृपाओं को सबों के साथ उदारता में बांटते हैं। अपने संबोधन के अंत में संत पापा ने कहा, ईश्वर हमसे कलिसय में कामयाब होने हेतु संख्या के आधार पर मूल्यांकन करने को नहीं कहते हैं। उन्होंने हमारे बीच आने के लिए छोटा होने का मार्ग चुना। छोटेपन का यह मनोभाव ही कलिसय की असली ताकत है। उन्होंने कहा, ऐसा करने हेतु हमें साहस की जरूरत है। संत पापा ने सुसमाचार प्रचार हेतु गठित पर्म धर्म पीठ समिति को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे दुनिया भर के युवाओं में आध्यात्मिक गरीबी के संकट से निपटने की कोशिशों में मदद करें। संत पापा ने बुधवार को सुसमाचार प्रचार हेतु गठित पर्म धर्म पीठ के पूर्ण अधिवेशन में भाग ले रहे प्रतिभागियों से मुलाकात की और उन्हें अपने संदेश में युवाओं के मध्य सुसमाचार प्रचार करने का आह्वान किया। संत पापा ने अपने संबोधन में कहा, दुनिया आशा की प्यासी है, अतः सुसमाचार प्रचार के माध्यम हम विश्वास को पुनः स्थापित करते और अपने को आशा में मजबूत होता पाते हैं, क्योंकि सुसमाचार की घोषणा हम में उम्मीद जगाती है। उन्होंने कहा, सुसमाचार की घोषणा इस बात की मांग करती है कि यह वैश्विक कलिसिय और स्थानीय समुदायों में हर कार्य का आधार हो। सिर्फ ऐसा करने के द्वारा ही विश्वास की खूबसूरती को फिर से खोजा जा सकता है और विश्वसनीयता को बेहतर रूप में प्रकट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कलिसय की प्रेरिताई मानवता में विश्वास की नींव को बनाए रखने में मदद करती है, ताकि हमारा भविष्य शांति, न्याय, आजादी और भाईचारे से भरा हो। संत पापा ने कहा, बहुत से युवा आध्यात्मिकता की भूख का एहसास कर रहे हैं और कलिसय निरंतर उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए सुसमाचार प्रचार के नए रूपों की खोज करने को कही जाती है। उधर वैटिकन समाचार को दिए गए एक साक्षात्कार में शिकागो के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल ब्लेज क्यूपिच ने कहा कि संत पापा लियो 14वें का पहला विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमनिटास
इस बात को सुदृढ़ करता है कि नई तकनीकी में मानवीय क्षमता से परे जाने की योग्यता है और संत पापा हमें इसके द्वारा मानवता में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु ध्यान आकर्षित कराते हैं। कार्डिनल क्यूपिज ने कहा, संत पापा लियो का यह विश्व प्रेरित पत्र हमारे लिए एक नया लेंस प्रदान करता है जिससे हम कलीसिया की पूरी सामाजिक धर्म सिद्धांत की शिक्षा को नए रूप में देख और पढ़ सकते हैं। आने वाले महीनों में संत पापा इटली भर में कई प्रेरितिक दौरा करेंगे जिसमें उत्तरी इटली के क्षेत्र एमिलिया रोमानिया का रिमिनी भी शामिल है। इस यात्रा में संत पापा शनिवार 22 अगस्त को लोगों के बीच दोस्ती हेतु संगोष्ठी के 47वें संस्करण में शामिल होंगे। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय एक्का। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। उपदेशक ग्रंथ का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य के सुख दुख और संपन्नता विपन्नता की प्राप्ति का आधार निश्चित नहीं किया जा सकता। पक्ष विपक्ष के तर्कों की जांच के बाद लेखक इसी उत्तर पर पहुंचता है कि ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और शांति का स्रोत हैं।

प्रज्ञा बुद्धिमान मनुष्य को नगर के 10 शासकों से अधिक शक्तिशाली बनाती है। संसार में ऐसा कोई धार्मिक नहीं जो भलाई ही करता और कभी पाप नहीं करता। लोग जो बातें कहते हैं उन सब पर ध्यान मत दो, नहीं तो तुम अपने नौकर को अपने को कोसते सुनोगे, क्योंकि तुम यह नहीं जानते हो कि तुमने कितनी बार दूसरों को कोसा है। श्रोताओ, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 19 से लेकर 22 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में प्रज्ञा, विवेक और ज्ञान को गुणी व्यक्तियों की पहचान निरूपित किया गया है। इन गुणों के द्वारा ही मनुष्य यथार्थ शक्ति प्राप्त करता है। श्रोताओ, उपदेशक ग्रंथ का 7वां अध्याय दुनियावी सुख सुविधाओं के भ्रम और जिंदगी की यथार्थ वास्तविकताओं के बीच अंतर बताने वाली ज्ञान की बातों का संकलन है। यह सिखाता है कि अच्छी शोहरत, प्रतिष्ठा अथवा ख्याति धैर्य या सब्र से आती है, और फिर मृत्यु की वास्तविकता को पहचानना तथा उसे स्वीकार करना एक अर्थपूर्ण जिंदगी की कुंजी है। श्रोताओ, इस स्थल पर उपदेशक बड़ी समझदारी से इस बात को प्रस्तुत कर देता है कि हम हमारे लिए दूसरों की बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, किंतु अन्यों के बारे में कुछ भी बक देते हैं। प्रायः बिना सोचे समझे अनर्गल बात कह देते हैं जो कि अनुचित है, इसलिए कि जब दूसरे, यहाँ तक कि हमारे अधीन काम करने वाले, ऐसी बातें हमारे बारे में कहने लगते हैं तब हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। अस्तु, किसी के भी बारे में अनर्गल न बका जाए। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में बुरा भला न सोचें या कहें, तो हम भी अन्यों के बारे में बुरा न सोचें या बुरा न बोलें। किसी को मत कोसो ताकि और कोई भी तुम्हें न कोसे। 7वें अध्याय के 23वें और 24वें पदों में उपदेशक कहता है, प्रज्ञा दुर्लभ है। प्रज्ञावान बनने की हमारी इच्छा केवल बुद्धि से पूरी नहीं होती, इसलिए यह स्वीकार करना कि जो कुछ इस धरती पर अस्तित्व में है वह हमारी समझ से परे है, विनम्रता का काम है। अस्तु, मनुष्य यह स्वीकार करे कि जिस ईश्वर ने उसे रचा वही सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है, उसकी महिमा अपरम्प।

आगे उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 25वें पद में उपदेशक कहता है, मैंने सारे हृदय से यह जानने का प्रयत्न किया कि प्रज्ञा और बुद्धि क्या है, और यह समझा कि दुष्टता ना समझी और मूर्खता पागलपन है। श्रोताओ, दुष्टता किसी व्यक्ति की वह बुरी मानसिकता या स्वभाव है जो उसे जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने, दूसरों को कष्ट देने या अनैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह स्वार्थ, क्रूरता और विद्वेष पर आधारित होती है। दूसरों को दुख पहुंचाना, छल कपट और षड्यंत्र में रमना तथा अहंकार और स्वार्थ में लिप्त रहना दुष्टता के प्रमुख लक्षण हैं। दूसरी ओर मूर्खता, अंग्रेजी में जिसे हम स्टुपिडिटी कहते हैं, मूल रूप से विवेक, तर्क और सही समझ के अभाव की स्थिति है, जहां व्यक्ति बिना परिणाम सोचे समझे कार्य करता है। यह अज्ञानता या किसी चीज का ज्ञान न होने से अलग है। मूर्खता प्रायः सही जानकारी होने के बावजूद गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। उपदेशक कहता है कि दुष्टता और मूर्खता दोनों से बचना चाहिए, क्योंकि दुष्टता नासमझी और मूर्खता पागलपन है। श्रोताओ, 7वें अध्याय में उपदेशक जीवन के आंतरिक अर्थ को समझाने के लिए एक गहन और दार्शनिक खोज में लगा प्रतीत होता है। दुष्ट और मूर्ख व्यक्ति अच्छाई को देखने के बजाय जानबूझकर अज्ञानता और पाप की प्रकृति की खोज करते हैं। इसलिए उपदेशक इस नतीजे पर पहुंचता है कि बुराई और मूर्खता असल में बेमतलब और नुकसान पहुंचाने वाली हैं। वह इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि हालांकि प्रभु ईश्वर ने सत्य और सुंदर तरीके से सृष्टि की रचना की है, इंसानी मूर्खता और दुष्टता उसे खराब कर खुद अपनी जिंदगी को मुश्किल बना देती है। आगे 7वें अध्याय के अंतिम यानी कि 26 से लेकर 29 तक के पदों में उपदेशक कहता है, मैं यह समझता हूं कि कुछ स्त्रियां मृत्यु से भी कड़वी हैं, वे फंदे जैसी हैं, उनका हृदय जाल जैसा और उनके हाथ जंजीर जैसे हैं। जो ईश्वर को प्रिय है वही उनसे बच सकता है, किंतु पापी उनके जाल में फंसता है। उपदेशक कहता है कि अनुसंधान करते करते मैं इतना ही जान पाया, मैं अनुसंधान करता रहा किंतु मैं असफल रहा। मुझे हजार में एक पुरुष मिला किंतु उन सबों में मुझे एक भी स्त्री नहीं मिली। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल बना दिया। श्रोताओं, ज्ञान की खोज में संलग्न उपदेशक सुलेमान समझ गया था कि कुछ स्त्रियां मृत्यु से भी अधिक कड़वी होती हैं। वे अपने करतूतों से या अपनी कड़वी भाषा से ऐसी हो सकती हैं। इसलिए कुछ स्त्रियां वह जाल है जिसमें पुरुष आसानी से फंस जाया करते हैं, किंतु जो व्यक्ति ईश्वर पर ध्यान लगाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वे उससे बच जाएंगे। जबकि जो पाप कर्मों में लगे रहते हैं वे स्त्रियों द्वारा बिछाए जाल में फंस जाते हैं। विधि विवरण ग्रंथ के 23वें अध्याय के 18वें पद के अनुसार ईश्वर का नियम है, कोई पुरुष या स्त्री मंदिर में होने वाले व्यभिचार के लिए अपने को अर्पित नहीं करेगी। श्रोताओं, सुलेमान ने उक्त पदों की रचना उस समय की होगी जब वह बूढ़ा हो चला था और उसकी पत्नियां उसे अन्य देवताओं की ओर रिझाने लगी थीं। वस्तुतः श्रोताओं, उपदेशक ग्रंथ सुलेमान के पश्चाताप की कथा है। उसने इसकी रचना तब की थी जब उसे दुनियावी भोग विलास और वासना की कटु सच्चाई की जानकारी हो गई थी। जब उसने अपनी गलतियों को समझा तभी वह ईश्वर की ओर अभिमुख हुआ। उपदेशक कहता है कि उसे हजार में एक पुरुष मिला किंतु उन हजार में उसे एक भी स्त्री नहीं मिली। बाइबल आचार्य राइट कहते हैं कि हैरम में या कई पत्नियों के साथ रहने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं हो सकता। वह सुखी तब होगा जब वह अपनी एकमात्र और अच्छी पत्नी के साथ जीवन बिताएगा।
फिर अपने निष्कर्ष में उपदेशक सुलेमान इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि ईश्वर ने मानव को पाप रहित बनाया था, किंतु आदि मानव आदम के समय से ही वह ईश्वर के खिलाफ पाप और बगावत की कई साजिशें रचता चला आ रहा है। इसीलिए अंतिम पद में कहता है, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया, किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल बना दिया।

आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन की 82वीं सभा को संबोधित किया।

के कार्यों और अपने सामुदायिक जीवन में ईश्वर के किस चेहरे को चमकने देते हैं। संत पापा ने कहा, अतः ख्रिस्तीय जीवन की पहल करना सिर्फ संस्कारों के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि यह एक कोक की भांति है जहां समुदाय में विश्वास उत्पन्न होता है, जो विश्वासियों को ईश्वर से मिलन, उनके पास का अनंत जीवन की ओर अग्रसर करता है। संत पापा लियो ने इस भांति इतालवी धर्माध्यक्षों के धर्म सम्मेलन को इस बात की चुनौती दी कि वे अपने समुदाय को सजीव और स्वागत करने, यूखरिस्त को जीवन का केंद्र बनाने, जहां गरीबों की सेवा बाह्य रूप में केवल नहीं की जाती बल्कि वे हमारे भाई बहन बनते हैं जिनके द्वारा हम ईश्वर से बातें करते हैं, जहां हम युवाओं की आवाज को सुनते और उनके जीवन की कहानियों से अपने को वाकिफ करते हैं। कलिसिया में चरवाहों की बुलाहट के सार की याद दिलाते हुए संत पापा ने धर्माध्यक्षों को गहराई से सुनने हेतु आह्वान किया। जहां सच्चा सुना जाता, वहां समुदाय अपने में सिमट कर नहीं रहता बल्कि यह समझदारी और प्रेरिताई की जगह बन जाती है और इसके द्वारा हम स्वयं को नवीन बनाते हैं, संत पापा ने कहा। सिनोडालिटी की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए संत पापा ने धर्माध्यक्षों से कहा कि ईश्वर हमें एक प्रजा के रूप में पवित्र करते हैं, अतः सिनोडल कलिसिया हर एक को पवित्र आत्मा में मिले वरदानों को साझा करने का निमंत्रण देता है, जहां हमारी सहभागिता, एकता और प्रेरिताई एक आवश्यक शैली, उत्तरदायित्व और योजना बनती है, जिनके माध्यम हम विभिन्न कृपाओं को सबों के साथ उदारता में बांटते हैं। अपने संबोधन के अंत में संत पापा ने कहा, ईश्वर हमसे कलिसिया में कामयाब होने हेतु संख्या के आधार पर मूल्यांकन करने को नहीं कहते हैं। उन्होंने हमारे बीच आने के लिए छोटा होने का मार्ग चुना। छोटेपन का यह मनोभाव ही कलिसिया की असली ताकत है, उन्होंने कहा। ऐसा करने हेतु हमें साहस की जरूरत है। संत पापा ने सुसमाचार प्रचार हेतु गठित पर्म धर्म पीठ समिति को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे दुनिया भर के युवाओं में आध्यात्मिक गरीबी के संकट से निपटने की कोशिशों में मदद करें। संत पापा ने बुधवार को सुसमाचार प्रचार हेतु गठित पर्म धर्म पीठ के पूर्ण अधिवेशन में भाग ले रहे प्रतिभागियों से मुलाकात की और उन्हें अपने संदेश में युवाओं के मध्य सुसमाचार प्रचार करने का आह्वान किया। संत पापा ने अपने संबोधन में कहा, दुनिया आशा की प्यासी है, अतः सुसमाचार प्रचार के माध्यम हम विश्वास को पुनः स्थापित करते और अपने को आशा में मजबूत होता पाते हैं, क्योंकि सुसमाचार की घोषणा हम में उम्मीद जगाती है। उन्होंने कहा, सुसमाचार की घोषणा इस बात की मांग करती है कि यह वैश्विक कलिसिया और स्थानीय समुदायों में हर कार्य का आधार हो। सिर्फ ऐसा करने के द्वारा ही विश्वास की खूबसूरती को फिर से खोजा जा सकता है और विश्वसनीयता को बेहतर रूप में प्रकट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कलिसिया की प्रेरिताई मानवता में विश्वास की नींव को बनाए रखने में मदद करती है, ताकि हमारा भविष्य शांति, न्याय, आजादी और भाईचारे से भरा हो। संत पापा ने कहा, बहुत से युवा आध्यात्मिकता की भूख का एहसास कर रहे हैं और कलिसिया निरंतर उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए सुसमाचार प्रचार के नए रूपों की खोज करने को कही जाती है। उधर वैटिकन समाचार को दिए गए एक साक्षात्कार में शिकागो के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल ब्लेज क्यूपिच ने कहा कि संत पापा लियो 14वें का पहला विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमनिटास इस बात को सुदृढ़ करता है कि नई तकनीकी में मानवीय क्षमता से परे जाने की योग्यता है और संत पापा हमें इसके द्वारा मानवता में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु ध्यान आकर्षित कराते हैं। कार्डिनल क्यूपिज ने कहा, संत पापा लियो का यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमारे लिए एक नया लेंस प्रदान करता है, जिससे हम कलिसिया की पूरी सामाजिक धर्म सिद्धांत की शिक्षा को नए रूप में देख और पढ़ सकते हैं। आने वाले महीनों में संत पापा इटली भर में कई प्रेरितिक दौरा करेंगे, जिसमें उत्तरी इटली के क्षेत्र इमिलिया रोमानिया का रिमिनी भी शामिल है। इस यात्रा में संत पापा शनिवार 22 अगस्त को लोगों के बीच दोस्ती हेतु संगोष्ठी के 47वें संस्करण में शामिल होंगे।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब, हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद। प्रभु येसु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नबियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके

0: प्रार्थना द्वारा
1: हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में घातक इबोला का फैलाव जारी है और पड़ोसी देश युगांडा में भी संक्रमण मामलों की पुष्टि हुई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र विमानन एजेंसी ICAO ने देशों की सरकारों और विमान संचालकों से आग्रह किया है कि उन सभी सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा जिन्हें पहले COVID-19 महामारी के दौरान लागू किया गया था। कांगो के पूर्वी हिस्से में इबोला की बुंडी बुग्यो नामक प्रजाति का संक्रमण एक बड़ी चिंता का विषय है। यहां अब तक 900 से अधिक संदिग्ध मामले और 220 संदिग्ध मौतों की जानकारी है। उधर युगांडा में 7 मामलों की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहले ही इबोला को अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित कर दिया था और बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। UN एजेंसी ने चिंता जताई है कि जिस गति में संक्रमण मामलों को रोकने की कोशिशें हो रही हैं, यह बीमारी उसकी तुलना में कहीं अधिक तेजी से फैल रही है। संयुक्त राष्ट्र विमानन एजेंसी ने इबोला से उपजी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने दिशा निर्देशों में बदलाव लाने की बात कही है, मगर यह भी स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं फिलहाल सुरक्षित हैं। यह 17वीं बार है जब डीआरसी में इबोला वायरस का प्रकोप हुआ है। इस बीमारी के बारे में पहली बार 1976 में पता चला था। 218 से 220 के दौरान उत्तरी कीवू, दक्षिण कीवू और इतुरी प्रांतों में अब तक के सबसे बड़े स्तर के संक्रमण मामले दर्ज किए गए थे। दुनिया भर में भूख यानी गंभीर खाद्य असुरक्षा कुछ चुनिंदा राज्यों में गहराई से जड़े जमा ली है। इस वर्ष की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट में आग्रह किया गया है कि वर्ष 2025 में 47 देशों में 26 करोड़ 60 लाख लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा की चपेट में थे। UN एजेंसियों और यूरोपीय संघ की जारी इस वैश्विक रिपोर्ट से मालूम होता है कि ये संख्या एक दशक पहले की तुलना में लगभग 2 गुनी हो चुकी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
3: इस विश्लेषण में खाद्य सुरक्षा की एक चिंताजनक तस्वीर पेश की गई है। भरपेट भोजन न मिल पाना अब केवल कुछ समय के लिए कोई आपात स्थिति नहीं है, बल्कि ये वैश्विक चुनौती निरंतर बनी हुई है। गंभीर भूख का सबसे बड़ा कारण युद्ध या हिंसक टकराव है। गहरी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की कुल संख्या के 50% से अधिक हिस्से के लिए यही जिम्मेदार है। पर्याप्त भोजन के अभाव से जूझ रहे कुल लोगों की 2/3 संख्या अब केवल 10 देशों में केंद्रित है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, सीरिया, यमन और गाजा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और सूडान। 2025 पहला ऐसा वर्ष था जब एक ही साल में 2 अलग-अलग अकाल दर्ज किए गए गाजा और सूडान के कुछ हिस्सों में। बच्चे सबसे अधिक प्रभावितों में हैं। 2025 में 3.5 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार थे। गाजा, म्यांमार, दक्षिण सूडान और सूडान जैसे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में एक नहीं बल्कि कई संकटों ने स्थिति को बदतर बना दिया है। इनमें हिंसक टकराव या युद्ध, बीमारियों का फैलाव और बुनियादी सेवाओं तक कम पहुँच जैसी समस्याएं हैं।
2: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्च कार्यालय की एक रिपोर्ट में इसराइली सेना और लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाकों के बीच हाल ही में भड़के हिंसक युद्ध में आम नागरिकों के मानव अधिकारों के उल्लंघन मामलों पर कहा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, आवास, काम और स्वतंत्र आवाजाही समेत अन्य मानव अधिकारों पर गहरा असर हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
4: यूएन मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता थमीन अल खीतान ने जिनेवा में बताया,
5: Our analysis of the large-scale attacks, shelling and ground incursions.
4: प्रवक्ता अल खीतान कह रहे थे कि मानवाधिकार कार्यालय के विश्लेषण में पाया गया है कि इसराइली सैन्य बलों ने बड़े पैमाने पर छेड़ी सैन्य कार्रवाई, गोलाबारी और जमीनी अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों समेत आम नागरिकों पर सीधे तौर पर हमले किए। ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का गंभीर उल्लंघन है और इस तरह के हमले युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी जारी रहे। उधर हिजबुल्लाह ने इसराइल को निशाना बनाकर रॉकेट हमले किए, जिससे इमारतों और नागरिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंची है। इन हमलों को भी अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के उल्लंघन की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चिंता जताई है कि गाजा पट्टी में 1800 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र आंशिक या पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुके हैं, जिनमें गाजा सिटी में स्थित अलशिफा जैसे बड़े अस्पताल और छोटे स्तर पर संचालित होने वाले प्राथमिक केंद्र भी शामिल हैं।
2: मध्य पूर्व में ईरान में कई सप्ताह जारी रहे हमलों के बाद नाजुक परिस्थितियों में युद्ध विराम लागू हुआ है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हवाई बमबारी शुरू कर दी थी। उसके बाद ईरान ने जवाबी ड्रोन व मिसाइली हमले किए थे, जिनके चपेट में खाड़ी क्षेत्र के देश भी आए। मध्य पूर्व में इस टकराव के कारण तेल व गैस के बाद अब खनिजों का भी संकट उत्पन्न हो गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
3: संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 28 फरवरी को मध्य पूर्व में युद्ध भड़कने से पहले तक प्रमुख खनिज पदार्थ और उनसे जुड़े उत्पाद विशाल मात्रा में उपलब्ध थे, मगर युद्ध के जारी रहने से सेमीकंडक्टर से लेकर सौर ऊर्जा पैनल तक हर चीज का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का दबाव बढ़ गया है। बाजारों में उपभोक्ता सामानों की कीमतें बढ़ रही हैं। यूरोप के लिए यूएन आर्थिक आयोग के अनुसार युद्ध का प्रभाव केवल ऊर्जा बाजार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तेल से प्राप्त होने वाले सल्फर, हीलियम और नेफ्था जैसे कुछ उप उत्पादों सब प्रोडक्ट्स को भी प्रभावित कर रहा है। ये सभी कच्चे तेल के शोधन से मिलने वाले उत्पाद हैं और उर्वरक से लेकर कीटनाशकों, प्लास्टिक, माचिस के साथ साथ सेमीकंडक्टर उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। नेफ्था कच्चे तेल के शोधन का एक अन्य उप उत्पाद है और रसायन उद्योग का एक प्रमुख आधार भी। यूएन ने आशंका जताई है कि कीमतों में वृद्धि के साथ साथ अब उद्योग भी इनके इस्तेमाल में कमी ला सकते हैं और इसलिए भविष्य में सौर ऊर्जा पैनल, मैग्नेट, बैटरी आदि का उत्पादन कम हो सकता है।
2: कामकाज के लंबे घंटे, कामकाज की असुरक्षा और बुलिंग यानी डराने धमकाने जैसे जोखिमों से जुड़ी स्वास्थ्य स्थितियों के कारण हर साल लगभग 9 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एक नई रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
4: मनोवैज्ञानिक कामकाजी वातावरण, वैश्विक घटनाक्रम और कार्रवाई के रास्ते नामक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से कामकाज की प्रकृति और स्वरूप तैयार किए जाते हैं, दैनिक स्तर पर कामकाज को किस तरह किया और कराया जाता है और प्रबंधित किया जाता है, उसका कामगारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट तैयार करने वालों ने इस स्थिति के लिए कार्यस्थलों पर काम के दबाव, प्रयास और प्रोत्साहन के बीच असंतुलन, रोजगार की असुरक्षा, लंबे समय तक काम करना और उत्पीड़न के माहौल को जिम्मेदार बताया है। चिंता की बात यह है कि ये प्रभाव अब बढ़ता जा रहा है, जो हृदय रोग और आत्महत्या सहित मानसिक विकारों की बढ़ती दरों के रूप में सामने आ रहा है।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो 14वें शनिवार 30 मई को वेटिकन गार्डन्स में युद्ध खत्म करने की अपनी बारंबार की अपील के साथ पवित्र रोजरी माला के पाठ की अध्यक्षता करेंगे। रोजरी माला विनती का हर भेद युद्ध से प्रभावित लोगों के प्रति समर्पित रहेगा और इसके दौरान बिछड़े हुए परिवारों से लेकर मेडिकल कर्मचारियों, राहत कर्मियों और स्वयं सेवकों के लिए भी प्रार्थना की जाएगी। अपने परमाधीक्षा काल के आरंभ ही से संत पापा लियो विश्व शांति हेतु अपनी अपीलों को दोहराते रहे हैं और लोगों से प्रार्थना का निवेदन करते रहे हैं। इसी संदर्भ में संत पापा रोम समय अनुसार शनिवार 30 मई को शाम 7 बजे मां मरियम को समर्पित महीने के अंत में वेटिकन गार्डन स्थित लूर्द की रानी मां मरियम को समर्पित गुफा के समक्ष पवित्र रोजरी माला के पाठ की अध्यक्षता करेंगे। तमाम विश्व के सभी लोगों और सभी पुण्य स्थलों को रोजरी की प्रार्थना में संत पापा लियो के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। जिन बड़े पुण्य स्थलों ने हिस्सा लेने की पुष्टि की है उनमें यूक्रेन का मरियम तीर्थ, फिलीपींस का मरियम तीर्थ, पुर्तगाल का फातिमा नगर मरियम तीर्थ, बोस्निया हर्जेगोविना का मेज्जुगोर मरियम तीर्थ, फ्रांस का लूर्द की रानी मरियम को समर्पित तीर्थ स्थल, लेबनान का मरियम तीर्थ और इटली के लोरेटो में परम धर्म पीठ हाउस ऑफ लोरेटो तीर्थ स्थल शामिल हैं। रोम में तीर्थयात्री और श्रद्धालु भी संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में लगी बड़ी स्क्रीन के जरिए प्रार्थना में हिस्सा ले सकेंगे। यह पहल सुसमाचार प्रचार संबंधी परम धर्म पीठीय परिषद के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार को 3 ट्वीट संदेश प्रकाशित कर एक बार फिर इस तथ्य की पुनरावृत्ति की कि तकनीकी विकास हालांकि मूल्यवान है, इसका उपयोग नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। अपने पहले ट्वीट संदेश में संत पापा लियो लिखते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रगति अपने आप में मूल्यवान है, हालांकि उसके उपयोग के लिए मानव शास्त्र दृष्टि को ध्यान से समझना जरूरी है, जो उसका मार्गदर्शन करता है तथा उसके लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है। यदि टेक्नोलॉजिकल प्रगति बिना किसी नैतिक और सामाजिक विकास के आगे बढ़ती है तो इसका परिणाम यह हो सकता है कि मानवता के विकास के बिना ही साधन बढ़ जाएंगे। बिना अधिक होने से अधिक होने में खतरा यह है कि व्यक्तियों का मूल्यांकन मुख्य रूप से उनके द्वारा उत्पन्न की गई चीजों के आधार पर किया जाएगा। अपने दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा लियो लिखते हैं, सुसमाचार प्रचार न तो संरचनाओं की कुशलता पर निर्भर करता है, न ही समाज में इसकी अहमियत पर और न ही किसी खास समय पर मिलने वाली आम सहमति पर। सबसे जरूरी बात है पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर भरोसा करना और उन रास्तों पर चलना जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होते हैं, ताकि लोगों को मसीह के पास, उनके बचाने वाले मुक्तिदायी वचन के पास और उनके नव जीवन प्रदान करने वाले प्रेम के निकट लाया जा सके। तीसरे संदेश में संत पापा लिखते हैं, ईश्वर अथक बोने वाले प्रतिदिन विश्व में जाते हैं और उदारतापूर्वक दिलों में अनंत की एक संपूर्ण जीवन की एक ऐसी मुक्ति की इच्छा को आरोपित करते हैं जो स्वतंत्र करती है। हमारा पहला काम है कि हम प्रभु की दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाएं, न सिर्फ सख्त और कठोर जमीन पर दुख मनाएं, बल्कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त की आंखों से उस फसल को देख पाएं जिसे ईश्वर खुद हमारे लिए तैयार करते हैं। इराक की राजधानी बगदाद में खलदई कैथलिक कलीसिया के संत योसेफ महागिरजाघर में शुक्रवार को बगदाद के खलदई प्राधिधर्माध्यक्ष महामहिम पोलिस तृतीय नोना का पद ग्रहण अनुष्ठान समारोह संपन्न हुआ। संत पापा लियो 14वें की ओर से पूर्वी रीति की कलीसियाओं के लिए गठित परम धर्म पीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल क्लाउडियो गुजरोती ने अनुष्ठान समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अपने प्रवचन में कार्डिनल ने कहा कि यह दिन खलदेई कलीसिया के लिए, इराक के लिए और साथ ही सार्वभौमिक कैथलिक कलीसिया के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि यह इसलिए क्योंकि इस दिन यहाँ कैथलिक और दूसरी कलीसियाओं के वरिष्ठ धर्माधिकारी सहित अन्य धर्मों के प्रतिनिधि, नागर और समाज के अधिकारी तथा डिप्लोमेटिक संस्थाओं के प्रतिनिधि खलदेई कलीसिया के दीर्घकालीन
और समृद्ध इतिहास को सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं। कार्डिनल गुजरौती ने कहा कि संत पापा लियो 14वें की ओर से वे इराक की खलदेई कलीसिया के प्रति शुभकामनाएं अर्पित करते, आपके प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते और इस समारोह में उपस्थित होकर भ्रातृत्वपूर्ण समर्थन का प्रदर्शन करते बहुत प्रसन्न थे। खलदेई कलीसिया के समृद्ध इतिहास की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कार्डिनल महोदय ने कहा, खलदेई कलीसिया का इतिहास रहस्यों से भरा है और कई मायनों में हैरान करने वाला है। यह प्रेरितों के प्रथम वारिसों की कलीसिया है। इसकी जड़ें सीधे यीशु मसीह की धरती से जुड़ी हैं। यह वह मिशनरी धरती थी जो दुनिया के सुदूर इलाकों तक पहुंची और जिसने सुसमाचार प्रचार द्वारा लोगों को आलोकित किया। कार्डिनल ने कहा कि सुसमाचार प्रचार राजनैतिक सत्ता से नहीं आया, बल्कि राजनैतिक सत्ता को समझने की इसकी शक्ति से, इसके सिद्धांतों की समृद्धता, इसकी संस्कृति और इसके रीति रिवाजों की स्पष्टता से आया। उन्होंने कहा कि इराक की खलदेई कलीसिया ने संस्थागत तौर पर भी सराहनीय कार्य किए, जिसके गवाह इसके अनगिनत मठ और विख्यात एवं सम्मानित विश्वविद्यालय हैं। इन शिक्षण संस्थाओं ने प्राचीन ग्रीक लेखों के अनुवाद कार्यों सहित सबसे ऊंचे स्तर के दार्शनिक और धर्म तत्व वैज्ञानिक विस्तार को जन्म दिया। मशहूर अरबी अनुवादकों के साथ इसने यूरोपीय जगत के लिए एक पुल का काम किया और उस शानदार संस्कृति को जन्म दिया जिसकी रोमी जगत में कई तरह से नकल की गई और जिसका बाद में पश्चिमी कैथलिक कलीसिया के कुछ सबसे विख्यात ईश शास्त्रियों ने अनुसरण किया। इसके अतिरिक्त कार्डिनल

समाजियों और धर्म संघियों तथा वैटिकन में नौकरीरत आम लोगों और सेवानिवृत्त लोगों को हेल्थ केयर कवरेज की गारंटी देती है। अंतोनियो दी इयारियो वैटिकन राज्य सचिवालय के सामान्य मामलों के कार्यालय के अधिकारी होंगे तथा आगामी 15 जुलाई को अपना पद संभालेंगे। उक्त कार्यालय के उपाध्यक्ष मान्यवर पाओलो रुदेली ने 28 मई को यह घोषणा की। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में घातक इबोला का फैलाव जारी है और पड़ोसी देश युगांडा में भी संक्रमण मामलों की पुष्टि हुई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र विमानन एजेंसी ICAO ने देशों की सरकारों और विमान संचालकों से आग्रह किया है कि उन सभी सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा जिन्हें पहले COVID-19 महामारी के दौरान लागू किया गया था। कोंगो के पूर्वी हिस्से में इबोला की बुंडी बुग्यो नामक प्रजाति का संक्रमण एक बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ अब तक 900 से अधिक संदिग्ध मामले और 220 संदिग्ध मौतों की जानकारी है। उधर युगांडा में 7 मामलों की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहले ही इबोला को अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित कर दिया था और बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। UN एजेंसी ने चिंता जताई है कि जिस गति में संक्रमण मामलों को रोकने की कोशिशें हो रही हैं, यह बीमारी उसकी तुलना में कहीं अधिक तेजी से फैल रही है। संयुक्त राष्ट्र विमानन एजेंसी ने इबोला से उपजी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने दिशा निर्देशों में बदलाव लाने की बात कही है, मगर यह भी स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं फिलहाल सुरक्षित हैं। यह 17वीं बार है जब डीआरसी में इबोला वायरस का प्रकोप हुआ है। इस बीमारी के बारे में पहली बार 1976 में पता चला था। 218 से 220 के दौरान उत्तरी कीवू, दक्षिण कीवू और इतुरी प्रांतों में अब तक के सबसे बड़े स्तर के संक्रमण मामले दर्ज किए गए थे। दुनिया भर में भूख यानी गंभीर खाद्य असुरक्षा कुछ चुनिंदा राज्यों में गहराई से जड़े जमा ली है। इस वर्ष की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट में आग्रह किया गया है कि वर्ष 2025 में 47 देशों में 26 करोड़ 60 लाख लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा की चपेट में थे। UN एजेंसियों और यूरोपीय संघ की जारी इस वैश्विक रिपोर्ट से मालूम होता है कि ये संख्या एक दशक पहले की तुलना में लगभग 2 गुनी हो चुकी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
3: इस विश्लेषण में खाद्य सुरक्षा की एक चिंताजनक तस्वीर पेश की गई है। भरपेट भोजन न मिल पाना अब केवल कुछ समय के लिए कोई आपात स्थिति नहीं है, बल्कि ये वैश्विक चुनौती निरंतर बनी हुई है। गंभीर भूख का सबसे बड़ा कारण युद्ध या हिंसक टकराव है। गहरी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की कुल संख्या के 50% से अधिक हिस्से के लिए यही जिम्मेदार है। पर्याप्त भोजन के अभाव से जूझ रहे कुल लोगों की 2/3 संख्या अब केवल 10 देशों में केंद्रित है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, सीरिया, यमन और गाजा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और सूडान। 2025 पहला ऐसा वर्ष था जब एक ही साल में 2 अलग-अलग अकाल दर्ज किए गए गाजा और सूडान के कुछ हिस्सों में। बच्चे सबसे अधिक प्रभावितों में हैं। 2025 में 3.5 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार थे। गाजा, म्यांमार, दक्षिण सूडान और सूडान जैसे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में एक नहीं बल्कि कई संकटों ने स्थिति को बदतर बना दिया है। इनमें हिंसक टकराव या युद्ध, बीमारियों का फैलाव और बुनियादी सेवाओं तक कम पहुँच जैसी समस्याएं हैं।
2: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्च कार्यालय की एक रिपोर्ट में इसराइली सेना और लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाकों के बीच हाल ही में भड़के हिंसक युद्ध में आम नागरिकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन मामलों पर कहा गया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, आवास, काम और स्वतंत्र आवाजाही समेत अन्य मानवाधिकारों पर गहरा असर हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
4: यूएन मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता थमीन अल खीतान ने जिनेवा में बताया,
5: Our analysis of the large-scale attacks, shelling and ground incursions.
4: प्रवक्ता अल खीतान कह रहे थे कि मानवाधिकार कार्यालय के विश्लेषण में पाया गया है कि इसराइली सैन्य बलों ने बड़े पैमाने पर छिड़ी सैन्य कार्रवाई, गोलाबारी और जमीनी अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों समेत आम नागरिकों पर सीधे तौर पर हमले किए। ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का गंभीर उल्लंघन है और इस तरह के हमले युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी जारी रहे। उधर हिजबुल्लाह ने इसराइल को निशाना बनाकर रॉकेट हमले किए जिससे इमारतों और नागरिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंची है। इन हमलों को भी अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के उल्लंघन की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चिंता जताई है कि गाजा पट्टी में 1800 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र आंशिक या पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुके हैं, जिनमें गाजा सिटी में स्थित अलशिफा जैसे बड़े अस्पताल और छोटे स्तर पर संचालित होने वाले प्राथमिक केंद्र भी शामिल हैं।
2: मध्य पूर्व में ईरान में कई सप्ताह जारी रहे हमलों के बाद नाजुक परिस्थितियों में युद्ध विराम लागू हुआ है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हवाई बमबारी शुरू कर दी थी। उसके बाद ईरान ने जवाबी ड्रोन व मिसाइली हमले किए थे जिनके चपेट में खाड़ी क्षेत्र के देश भी आए। मध्य पूर्व में इस टकराव के कारण तेल व गैस के बाद अब खनिजों का भी संकट उत्पन्न हो गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
3: संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 28 फरवरी को मध्य पूर्व में युद्ध भड़कने से पहले तक प्रमुख खनिज पदार्थ और उनसे जुड़े उत्पाद विशाल मात्रा में उपलब्ध थे, मगर युद्ध के जारी रहने से सेमीकंडक्टर से लेकर सौर ऊर्जा पैनल तक हर चीज का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का दबाव बढ़ गया है। बाजारों में उपभोक्ता सामानों की कीमतें बढ़ रही हैं। यूरोप के लिए यूएन आर्थिक आयोग के अनुसार युद्ध का प्रभाव केवल ऊर्जा बाजार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तेल से प्राप्त होने वाले सल्फर, हीलियम और नेफ्था जैसे कुछ उप उत्पादों सब प्रोडक्ट्स को भी प्रभावित कर रहा है। ये सभी कच्चे तेल के शोधन से मिलने वाले उत्पाद हैं और उर्वरक से लेकर कीटनाशकों, प्लास्टिक, माचिस के साथ साथ सेमीकंडक्टर उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। नेफ्था कच्चे तेल के शोधन का एक अन्य उप उत्पाद है और रसायन उद्योग का एक प्रमुख आधार भी। यूएन ने आशंका जताई है कि कीमतों में वृद्धि के साथ साथ अब उद्योग भी इनके इस्तेमाल में कमी ला सकते हैं और इसलिए भविष्य में सौर ऊर्जा पैनल, मैग्नेट, बैटरी आदि का उत्पादन कम हो सकता है।
2: कामकाज के लंबे घंटे, कामकाज की असुरक्षा और बुलिंग यानी डराने धमकाने जैसे जोखिमों से जुड़ी स्वास्थ्य स्थितियों के कारण हर साल लगभग 9,00,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एक नई रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
4: मनोवैज्ञानिक कामकाजी वातावरण, वैश्विक घटनाक्रम और कार्रवाई के रास्ते नामक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से कामकाज की प्रकृति और स्वरूप तैयार किए जाते हैं, दैनिक स्तर पर कामकाज को किस तरह किया और कराया जाता है और प्रबंधित किया जाता है, उसका कामगारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट तैयार करने वालों ने इस स्थिति के लिए कार्यस्थलों पर काम के दबाव, प्रयास और प्रोत्साहन के बीच असंतुलन, रोजगार की असुरक्षा, लंबे समय तक काम करना और उत्पीड़न के माहौल को जिम्मेदार बताया है। चिंता की बात यह है कि ये प्रभाव अब बढ़ता जा रहा है, जो हृदय रोग और आत्महत्या सहित मानसिक विकारों की बढ़ती दरों के रूप में सामने आ रहा है।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो 14वें शनिवार 30 मई को वेटिकन गार्डन्स में युद्ध खत्म करने की अपनी बारंबार की अपील के साथ पवित्र रोजरी माला के पाठ की अध्यक्षता करेंगे। रोजरी माला विनती का हर भेद युद्ध से प्रभावित लोगों के प्रति समर्पित रहेगा और इसके दौरान बिछड़े हुए परिवारों से लेकर मेडिकल कर्मचारियों, राहत कर्मियों और स्वयं सेवकों के लिए भी प्रार्थना की जाएगी। अपने परमाधीक्षा काल के आरंभ ही से संत पापा लियो विश्व शांति हेतु अपनी अपीलों को दोहराते रहे हैं और लोगों से प्रार्थना का निवेदन करते रहे हैं। इसी संदर्भ में संत पापा रोम समय अनुसार शनिवार 30 मई को शाम 7 बजे मां मरियम को समर्पित महीने के अंत में वेटिकन गार्डन स्थित लूर्द की रानी मां मरियम को समर्पित गुफा के समक्ष पवित्र रोजरी माला के पाठ की अध्यक्षता करेंगे। तमाम विश्व के सभी लोगों और सभी पुण्य स्थलों को रोजरी की प्रार्थना में संत पापा लियो के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। जिन बड़े पुण्य स्थलों ने हिस्सा लेने की पुष्टि की है उनमें यूक्रेन का मरियम तीर्थ, फिलीपींस का मरियम तीर्थ, पुर्तगाल का फातिमा नगर मरियम तीर्थ, बोस्निया हर्जेगोविना का मेजुगोर मरियम तीर्थ, फ्रांस का लूर्द की रानी मरियम को समर्पित तीर्थ स्थल, लेबनान का मरियम तीर्थ और इटली के लोरेटो में परम धर्मपीठ हाउस ऑफ लोरेटो तीर्थ स्थल शामिल हैं। रोम में तीर्थयात्री और श्रद्धालु भी संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में लगी बड़ी स्क्रीन के जरिए प्रार्थना में हिस्सा ले सकेंगे। यह पहल सुसमाचार प्रचार संबंधी परम धर्म पीठीय परिषद के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार को 3 ट्वीट संदेश प्रकाशित कर एक बार फिर इस तथ्य की पुनरावृत्ति की कि तकनीकी विकास हालांकि मूल्यवान है, इसका उपयोग नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। अपने पहले ट्वीट संदेश में संत पापा लियो लिखते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रगति अपने आप में मूल्यवान है, हालांकि उसके उपयोग के लिए मानव शास्त्रीय दृष्टि को ध्यान से समझना जरूरी है, जो उसका मार्गदर्शन करता है तथा उसके लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है। यदि टेक्नोलॉजिकल प्रगति बिना किसी नैतिक और सामाजिक विकास के आगे बढ़ती है तो इसका परिणाम यह हो सकता है कि मानवता के विकास के बिना ही साधन बढ़ जाएंगे। बिना अधिक होने से अधिक होने में खतरा यह है कि व्यक्तियों का मूल्यांकन मुख्य रूप से उनके द्वारा उत्पन्न की गई चीजों के आधार पर किया जाएगा। अपने दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा लियो लिखते हैं, सुसमाचार प्रचार न तो संरचनाओं की कुशलता पर निर्भर करता है, न ही समाज में इसकी अहमियत पर और न ही किसी खास समय पर मिलने वाली आम सहमति पर। सबसे जरूरी बात है पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर भरोसा करना और उन रास्तों पर चलना जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होते हैं, ताकि लोगों को मसीह के पास, उनके बचाने वाले मुक्तिदायी वचन के पास और उनके नव जीवन प्रदान करने वाले प्रेम के निकट लाया जा सके। तीसरे संदेश में संत पापा लिखते हैं, ईश्वर अथक बोने वाले प्रतिदिन विश्व में जाते हैं और उदारतापूर्वक दिलों में अनंत की एक संपूर्ण जीवन की एक ऐसी मुक्ति की इच्छा को आरोपित करते हैं जो स्वतंत्र करती है। हमारा पहला काम है कि हम प्रभु की दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाएं, न सिर्फ सख्त और कठोर जमीन पर दुख मनाएं, बल्कि पुनर्जीवित प्रभु येसु ख्रीस्त की आंखों से उस फसल को देख पाएं जिसे ईश्वर खुद हमारे लिए तैयार करते हैं। इराक की राजधानी बगदाद में खलदई कैथलिक कलीसिया के संत योसेफ महागिरजाघर में शुक्रवार को बगदाद के खलदई प्राधिधर्माधीश महामहिम पोलिस तृतीय नोना का पद ग्रहण अनुष्ठान समारोह संपन्न हुआ। संत पापा लियो 14वें की ओर से पूर्वी रीति की कलीसियाओं के लिए गठित परम धर्म पीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल क्लाउडियो गुज्जरोती ने अनुष्ठान समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अपने प्रवचन में कार्डिनल ने कहा कि यह दिन खलदेई कलीसिया के लिए, इराक के लिए और साथ ही सार्वभौमिक कैथलिक कलीसिया के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि यह इसलिए क्योंकि इस दिन यहाँ कैथलिक और दूसरी कलीसियाओं के वरिष्ठ धर्माधिकारी सहित अन्य धर्मों के प्रतिनिधि, नागर और समाज के अधिकारी तथा डिप्लोमेटिक संस्थाओं के प्रतिनिधि खलदेई कलीसिया के दीर्घकालीन
और समृद्ध इतिहास को सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं। कार्डिनल गुजरौती ने कहा कि संत पापा लियो 14वें की ओर से वे इराक की खलदेई कलीसिया के प्रति शुभकामनाएं अर्पित करते, आपके प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते और इस समारोह में उपस्थित होकर भ्रातृत्वपूर्ण समर्थन का प्रदर्शन करते बहुत प्रसन्न थे। खलदेई कलीसिया के समृद्ध इतिहास की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कार्डिनल महोदय ने कहा, खलदेई कलीसिया का इतिहास रहस्यों से भरा है और कई मायनों में हैरान करने वाला है। यह प्रेरितों के प्रथम वारिसों की कलीसिया है। इसकी जड़ें सीधे यीशु मसीह की धरती से जुड़ी हैं। यह वह मिशनरी धरती थी जो दुनिया के सुदूर इलाकों तक पहुंची और जिसने सुसमाचार प्रचार द्वारा लोगों को आलोकित किया। कार्डिनल ने कहा कि सुसमाचार प्रचार राजनीतिक सत्ता से नहीं आया, बल्कि राजनीतिक सत्ता को समझने की इसकी शक्ति से, इसके सिद्धांतों की समृद्धता, इसकी संस्कृति और इसके रीत रिवाजों की स्पष्टता से आया। उन्होंने कहा कि इराक की खलदेई कलीसिया ने संस्थागत तौर पर भी सराहनीय कार्य किए, जिसके गवाह इसके अनगिनत मठ और विख्यात एवं सम्मानित विश्वविद्यालय हैं। इन शिक्षण संस्थाओं ने प्राचीन ग्रीक लेखों के अनुवाद कार्यों सहित सबसे ऊंचे स्तर के दार्शनिक और धर्म तत्व वैज्ञानिक विस्तार को जन्म दिया। मशहूर अरबी अनुवादकों के साथ इसने यूरोपीय जगत के लिए एक पुल का काम किया और उस शानदार संस्कृति को जन्म दिया जिसकी रोमी जगत में कई तरह से नकल की गई और जिसका बाद में पश्चिमी कैथलिक कलीसिया के कुछ सबसे विख्यात ईश शास्त्रियों ने अनुसरण किया। इसके अतिरिक्त कार्डिनल ने कहा कि दक्षिण भारत की कलीसिया आज भी इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे इराक की खलदेई कलीसिया ने संपूर्ण विश्व में सबसे कामयाब और दिलचस्प ख्रिस्तीय समुदायों में से एक को एकजुट किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जटिल राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बावजूद इराक की कलीसिया अपने लोगों में विश्वास को सुदृढ़ कर पाएगी तथा एक बेहतर भविष्य की आशा को जगा पाएगी। अंतोनियो दी इयारियो वैटिकन की स्वास्थ्य देखभाल निधि फास के नए निर्देशक नियुक्त कर दिए गए हैं। यह निधि वैटिकन की वह संस्था है जो रोमी परम धर्म पीठीय कार्यालयों में सेवारत धर्म समाजियों और धर्म संघियों तथा वैटिकन में नौकरीरत आम लोगों और सेवानिवृत्त लोगों को हेल्थ केयर कवरेज की गारंटी देती है। अंतोनियो दी इयारियो वैटिकन राज्य सचिवालय के सामान्य मामलों के कार्यालय के अधिकारी होंगे तथा आगामी 15 जुलाई को अपना पद संभालेंगे। उक्त कार्यालय के उपाध्यक्ष मान्यवर पाओलो रुदेली ने 28 मई को यह घोषणा की। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।